प्यार करते रहते हैं, बाद में अपना उसे करते रहते ना, तो उसका जंगल में ना फाइटिंग दिक्कत है, फाइटिंग के बाद ना दूसरे को मारते रहते ना, फिर ना वही उधर मर जाते हैं, फिर वो उसको लेके ना भाग जाते हैं, भागने के बाद शूटिंग रहते ना उधर उधर जाके ना उन लोग पार्टी वूटी करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर रहते हैं क्या करते हैं, बिल्डिंग के बीच में रखी बांध के ना

मुर्गी बेचने वाला अपनी दुकान शाम को सबसे पहले बंद करता है। नाई और दूसरे अक्सर रात तक काम करते हैं। नाई का सपना है कि वो शहर में एक अपनी दुकान खोले और मुर्गी बेचने वाले का सपना एक बिल्ली हो। दूसरे का फिलहाल कोई सपना नहीं है, उसको सिर्फ अपने बाप की मौत पर अफसोस है। उसकी बीवी उसका मनपसंद खाना रसोई की खिड़की में रखती है। एक कौवा आता है, उसमें से खाना लेता है। इस तरह से उसके बाप की आत्मा को शांति मिलती है। दूसरे सबसे ज़्यादा काम करता है, वो शाम को सबसे देर से जाता है और सुबह सबसे पहले आता है।